अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगे पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन निभाने के लिए राम जी चले वनवास।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री रामलला भगवान की, श्री आनंदकंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की।

व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यताहिने नमो वयं वैश्ववराय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यम्।

भर्जनम भवबीजानाम मर्जनम सुखसंपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेद धरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जै जै

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 11 है विश्वरूप दर्शन योग। भक्त की जिज्ञासा पराकाष्ठा पर है, वह प्रभु के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। भगवान से दिव्य चक्षु पाकर वह उस अति तेजस्वी दिव्य शस्त्रों व वस्त्रों से युक्त विशाल काय बहुआयामी स्वरूप को देखकर रोमांचित एवं कदाचित भयभीत हो उठता है।

श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप को प्रणाम करता हुआ अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, मैंने अज्ञानतावश आपको मित्र व सखा समझा, आपका उपहास किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे विश्वमूर्ते, मुझ पर प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाओ।

जनार्दन अपना सौम्य रूप दिखलाकर प्रिय भक्त को आश्वस्त करते हैं। वे कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ इस स्वरूप के दर्शन किसी वेद ज्ञान, तप, दान अथवा पूजा से नहीं, अपितु मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं।

கணபதி பாப்பா, மங்கள் மூர்த்தி.

0: बैठो बच्चों, बैठो बैठो, आज सुनाता हूँ मैं, बैठो आज सुनाता हूँ मैं रामचंद्र की कथा। माता पिता के हुक्म के आगे राम ने टेका माथा। चले गए वन में ना ये मन में कोई शंका, अच्छे अच्छे काम किए सब और जीत ली लंका, और जीत ली लंका।
1: अच्छा बाबा, ऐसा हुआ था?

0: सच सच तो सुख देता है, झूठ दुख देता है। सच
1: सुख देता है,
0: झूठ
1: दुख देता है।
0: अच्छे भले किसी घोड़े को गधा बना देता है। दिल ना किसी का तोड़ो, चाहे टूटे खिलौना। मीठे फल खाने हो तो बीज भी मीठे बोन।

एक बात मैं और कहूंगा, सदा ध्यान में रखना बच्चों, सदा ध्यान में रखना, झूठ कपट छल बेईमानी से बच्चों बच के रहना, बच्चों बच के रहना।

0: ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप ही शीतल होए। मालिक एक,
1: साईं बाबा सच्चे,
0: मालिक एक,
1: कहते हैं सारे बच्चे,
0: छोटे बच्चे सच्चे, छोटे बच्चे अच्छे, सारे बच्चे सच्चे, सारे बच्चे सच्चे, सारे बच्चे अच्छे। मालिक एक।

0: वराह पर्वतमाला, तेरा उद्गम स्थान श्रृंगेरी हरिहर हम्पी, तेरे तीर स्थान धार्मिक एकता तेरा नारा, सांस्कृतिक क्षमता मंत्र प्यारा।
1: वरदा वेदवती हंद्री, वेणी भीमराती मलपहरिणी आदि पुण्य धाराओं को लेकर मुक्ति क्षेत्र में कृष्णा से तेरा संगम है कितना हृदयंगम।

0: तुम भद्रा, तुम्हारा नाम लेते ही 14वीं 15वीं तथा 16वीं सदियों में दक्षिण भारत में बसे उस भूतल स्वर्ग विजयनगर साम्राज्य की याद आ जाती है, जिसकी राजविधियों में मोती पन्ने जैसी बहुमूल्य रत्न राशि बेची जाती थी। चांदी सोने से आभूषित वे राज प्रासाद, वेद उपनिषदों के अनुरणन में गुंजित मंदिर, संगीत नाट्य कला की निरंतर उपासना से महिमान्वित वे कला मंडप,
1: और हाँ, याद आ जाती है साहित्य समरांगण सार्वभौम श्री कृष्णदेव राय के सक्षम नेतृत्व में निश्चिंत प्रजा के सुख जीवन की, अपने तीरों पर पनपती सांस्कृतिक समृद्धि को गर्व से निहारती तुंगभद्रा की जलधाराओं की।
0: कर्नाटक की जनता तुंगभद्रा की उन अमृतमय धाराओं की नेति नेति प्रशंसा करती रहती है, गंगा स्नानम तुंगापानम कहकर।
1: साधारण जनता ही क्यों, बड़े बड़े विद्वान व पंडित भी तुम्हारी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। विजयनगर साम्राज्य के सुविख्यात तेलुगु कवि तेनाली रामकृष्ण ने कहा,

0: यक्ष के क्रूर बंधन में जकड़ी अपनी प्रिय सखी भूदेवी की रक्षा करने महाविष्णु वराह अवतार लिए उस दानव संहार के बाद विश्राम करते हुए विष्णु देव के दोनों खगों पर से जो श्वेत निकला वही तुंगभद्रा कहलाया, यानी कि मैं उस अवतार गाथा प्रणय गाथा की साक्षी हूं। मैं
1: अपने उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य के वराह पर्वत की पश्चिमी घाटियों में से कदम बढ़ाती ये सरित कन्या तुंगा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पावन श्रृंगेरी क्षेत्र में श्री शारदम्बा का तथा आगे शिमोगा में शिवजी का दर्शन कर लेती है। फिर तीर्थहल्ली में परशुराम की कुल्हाड़ी से बनी घाटी के तीर्थ को लेकर कूलली की तरफ चलती है अपनी छोटी बहन भद्रा की प्रतीक्षा में।
2: तुंगा की छोटी बहन भद्रा समीप ही के बाबा बडून पर्वतमाला में जन्म लेकर होन्नूर को पार करती बड़ी उत्सुकता से पहुंचती है कूडली अपनी बड़ी बहन तुंगा से मिलने।
0: हम दोनों का वो संयुक्त रूप अभीप्सित हितदायिनी तुंगभद्रा कहलाया, हमारी इस अपूर्व एकता के प्रतीक ठहरे मेरे तीरों पर बसे विविध तीर्थ स्थान। सबसे पहला क्षेत्र है हरिहरा।
1: गुहासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा के दर्शन के लिए घोर तपस्या की थी। वर्षों बाद ब्रह्मदेव के दर्शन हुए। उसने वर मांगा, पशु पक्षी दानव मानव आखिर हर या हरि तक से भी उसे प्राण भय न होने का, और पाया भी। बाद में उसकी क्रूरता के शिकार बने देवता लोग जाकर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के पैर पड़े उस राक्षस से उन्हें बचाने के लिए। आखिर हर और हरि के सम्मिलित अवतार हरिहरेश्वर द्वारा उस राक्षस का वध हुआ, और तभी से ये क्षेत्र गुहारण क्षेत्र और हरिहरेश्वर भी पुकारा जाने लगा।
2: इतिहास पुराण के अलावा तुंगभद्रा भारत जाति की राजनीतिक गतिविधियों की भी साक्षी रही। भारत के स्वातंत्र प्रदाता व जाति पिता महात्मा गांधी के स्मृत अवशेष 1948 में 15 फरवरी के दिन हरिहरा क्षेत्र के तुंगभद्रा में निमज्जित किए गए।

0: हरिहरा के बाद मेरी यात्रा उस शुभंकर प्रदेश किष्किंधा की तरफ चली, जहां सीता वियोग में दुखित श्री रामचंद्र को सीता का कुशल समाचार मिला। ये वो प्रदेश है जहां समुज्ज्वल वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक महातपस्वी विद्यारण्य के निर्देशन में विजयनगर महासाम्राज्य की स्थापना हुई थी। धार्मिक एकता, सांस्कृतिक क्षमता और ऐतिहासिक मान्यताओं का सुंदर साकार रूप था विजयनगर। कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा तक तथा पूर्व पश्चिम सरहदों तक के सुविशाल भूमंडल में विस्तृत विजयनगर।
1: सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री कृष्ण स्वामी ने अपने ग्रंथ सोर्सेज में इसका उल्लेख किया कि विजयनगर राजा वैष्णव होते हुए भी अपने राज में अन्य धर्मावलंबी नायक तथा सेनापतियों को रखा करते थे। मुसलमानों के लिए नगर में मस्जिदें थीं।
0: विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी सुविख्यात था। राजधानी हम्पी संगीत, साहित्य, शिल्प, मूर्ति, स्थापत्य इत्यादि अनेकानेक कलाओं का आगार था। मुझे लग रहा था कि कुबेर की अमरावती मानो स्वयं स्वर्ग से उतर आई है वहां पर।

0: आप कुछ पर्यटकों से मिलते हैं?
1: I'm from Germany. I was told by an Israelian girl that Hampi
2: मैं जर्मनी से आया हूँ. इज़राइल से आई हुई एक और महिला पर्यटक ने मुझे हम्पी के दर्शन करने की सलाह दी. मेरे लिए यह एक अच्छा अनुभव है कि यहाँ भारतीय संस्कृति, सभ्यता व जन जीवन को नज़दीक से देखने का अवसर मिला.
3: I enjoy Hampi very much because of the beautiful landscape.
0: यहाँ के सुंदर खंडहरों के बीच चलते फिरते देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. विजयनगर साम्राज्य के वैभव के बारे में मालूम होता कितना ही अच्छा लग रहा है. I love it.
4: लेकिन सन 1565 ईस्वी की राक्षस तंगड़ी युद्ध ने इस स्वर्ग को नरक बना दिया. मेरे ही पुत्रों के बीच राज्य लिप्सा की नागिन का विष, निर्जीव नंदन वन, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मिटाने के प्रयत्न. इसका नतीजा क्या हुआ? यहां खड़े हुए शोकाकुल खंडहर, आज मेरी स्थिति नीरवता के बीच मौन यात्रा.
0: तुम्हारी वर्तमान विजय गाथा के बारे में पूछना तो हम भूल ही गए, तनिक बताओ तो सही.
4: जिस तरह मैंने इतिहास में प्रजा कल्याण व संस्कृति के उत्थान के लिए सभी उत्साही राजाओं को सहयोग दिया था, उसी तरह आज भी मैं आवश्यकता अनुकूल चलती आ रही हूँ. इसीलिए विकास संबंधी विविध क्षेत्रों में प्रजा को अपना सहयोग देती आ रही हूँ.
5: स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने की परियोजना का श्री गणेश किया था. सन 1940 में सर आर्थर होप के हाथों कर्नाटक के होसपेट शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक बृहद जलाशय का शिलान्यास हुआ
0: और 1953 तक इस बांध का निर्माण पूरा हुआ. स्वतंत्र भारत के स्वर्णिम सपनों को साकार देखने की सर्वप्रथम स्फूर्ति तुंगभद्रा ने ही दी. इस बांध से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहे हैं श्री सी सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के मुख्य अभियंता.
6: मेन डैम इन मैसनरी अक्रॉस द रिवर 5712 फीट इन लेंथ ऑफ व्हिच 2300 फीट.
7: तुंगभद्रा बांध की लंबाई 5712 फुट है और उस पर 2300 फुट का पिलवे है. नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है. वहां के खेतों को सींचती हुई
5: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है.
7: तुंगभद्रा बांध की लंबाई 5712 फुट है और उस पर 2300 फुट का पिलवे है. नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है. वहां के खेतों को सींचती हुई
5: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है 133 टीएमसी फीट.
0: इस बांध द्वारा कर्नाटक के रायचूर तथा बल्लारी जिलों में 30 लाख हेक्टर की भूमि सिंचाई की सुविधा पा रही है. इस नदी के तीर प्रांतों की मिट्टी मुख्यतया लाल व काली मिट्टी है जो धान, गन्ने, मूंगफली, कपास, केले आदि के पैदावार के लिए लाभदायक है.
5: अरे हाँ,

0: उन लहलहाते खेतों की तरफ देखो, लग रहा है कि खुशहाली के मेले लगे हुए हैं वहां। तुंगभद्रा की छत्र छाया में कितने खुश और निश्चिंत हैं वे लोग।
1: और नदी योजना की सफलता के बारे में किसानों के विचार। श्री शंकर गौड़, किसान संघाध्यक्ष व पूर्व विधायक।
2: ये तुंगभद्रा ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ
3: ಬೆಳೆಯಲು ಜರುರತ್ಗೆ ಮುತಾಬಿಕ ಪಾನಿ ನಹೀ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಧ ಬನ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕಿಸಾನೋ ಕೋ ಕಾಫಿ ಸುವಿಧಾ ಹುಯಿ ಔರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಫಸಲೆ ಜೈಸೆ ಕಪಾಸ್ ಮೂಂಗಫಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಭೀ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ।
1: 70 ಸಾಲ ಕೆ अनुभवी किसान श्री एम वी नायक, एक स्वतंत्रता सेनानी तथा हरिहर नगर पालिका के पूर्वाध्यक्ष।
4: तुंगभद्रा नदी तटाक सुमार 4-5 सक्रिय कंपनी।
5: कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा के किनारों पर भद्रावती, शिवमोग्गा, हरिहर, दावणगेरे जैसे जगहों पर चीनी के कारखाने हैं और कई लोग इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं।
0: इस पानी का उपयोग सिंचाई के अलावा बिजली उत्पादन में तथा मछली पालन में भी किया जा रहा है।
1: श्री सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के अभियंता।
6: एंड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर फॉर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 99 मेगावाट्स द प्रोजेक्ट वाज टेकन अप इन 1945 एंड कंप्लीटेड इन 1953।
7: जल विद्युत के उत्पादन के लिए 1945 में तुंगभद्रा बांध परियोजना का संकल्प हुआ और 1953 तक यह पूरा हुआ। अब यहाँ बांध के दोनों तरफ 4 यूनिट तथा 9 मेगावाट के 2 बिजली घर हैं और हम्पी के पास इसी क्षमता का एक और बिजली घर है।
0: इन बिजली घरों द्वारा उत्पादित बिजली से आंध्र तथा कर्नाटक की प्रजा लाभ उठाती है।
1: तुंगभद्रा जलाशय का विस्तार 378 वर्ग किलोमीटर है, जो मछली पालन के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस केंद्र से प्रतिवर्ष 2000 टन से भी अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। आंध्र, केरल व कलकत्ते की प्रजा भी इन लाजवाब जल पुष्पों का स्वाद लेती है। सुनिए ये मछुआरे क्या कह रहे हैं। श्री कारे सत्तैया।
8: वो कटला मिर्गालो कावन कार्पो
9: रवो, कटला, मिर्गालू जैसे तरह तरह की मछलियां यहां पर मिलता है। 64 में मछली पकड़कर टोकरे में रखकर गांव को जाकर बेचा करते थे। हमको 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया मिलता था। अब 20 रुपया, 30 रुपया मिलता है। अब हम बच्चों को स्कूल को पढ़ाई के लिए भी भेजता है और मकान भी बना लिया है।
0: तुंगभद्रा बांध के यंत्र समूह की तैयारी में सुविधा के लिए सन 1948 में तुंगभद्रा प्रोजेक्ट वर्कशॉप तथा मशीनरी वर्कशॉप का आरंभ हुआ था। इसमें पहली बार वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया गया और बांध के फाटकों का निर्माण हुआ। बांध की समाप्ति के बाद सन 1967 में ये एक सार्वजनिक उपक्रम बना और धीरे धीरे इसका कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ये संस्था अपनी सेवा प्रदान करती है।
1: इस वर्कशॉप के कार्यकलापों का विवरण दे रहे हैं तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक श्री एसपी त्रिपाठी।
10: कंपनी की स्थापना के समय इसके कर्मचारियों की संख्या थी 405 और अब आज 1993 में इनकी संख्या 1045 है। इस तरह कंपनी ने कई लोगों को रोजगार देने में साथ दिया। जब कंपनी 1960 में आरंभ हुई थी उस वक्त इसका उत्पादन मूल्य था 38 लाख रुपया और पिछले साल उत्पादन हुआ 33.07 करोड़ रुपये का, अर्थात स्थापना समय से आज तक के उत्पादन में करीबन 100 गुना वृद्धि। और इसका शुभारंभ हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से ही हुआ।

0: हॉस्पिटल से आगे बढ़ती हुई मैं बल्लारी व रायचूर जिलों में से आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। वैसे तो पुराने व आधुनिक अभियंताओं ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बसवन्ना, रामसागर, कोरिगल, शिवपुर और गंगावती आदि बहुत सारी नहरें बनाकर मेरे पानी को उस भूखंड पर बहाया जहां मैं नहीं पहुंच सकती थी। इस तरह मेरे पानी की सार्थकता और बढ़ी। वैसे आगे चलते चलते मैंने कर्नूल जिले में प्रवेश किया।
1: इस नगर के एक छोर पर तुंगभद्रा नदी है तो दूसरे छोर पर तुंगभद्रा मशीनरी एंड टूल्स लिमिटेड संस्था, दोनों जीवनदायिनी हैं। इसने भारत के गौरव में चार चांद लगाए हैं। इस संस्था के बारे में बता रहे हैं मैनेजर श्री के रामकृष्णय्या।
2: 1991 ఆర్డర్ 1993 కల్ సప్లై సంత కంప్లీట్ చేశాము। దీనికి గాను మాకు 1990-91 సంవత్సరం
3: విదేశం మే కదం రఖనే కా గౌరవ్ హమే మిలా 1991 మే కాగజ్ ఉద్యోగ్ కే లియే आवश्यक सामग्री की पूर्ति हम करते हैं।
2: पेपर मशीन
3: इसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल से हमें विशिष्ट निर्यात अवार्ड भी मिला है। इसी तरह अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका से कागज मशीन निर्यात के लिए ऑर्डर मिले हैं। हमारे हाथ में अब 36 अरब डॉलर के ऑर्डर्स हैं।
4: कर्नूल नगर में 500 साल पुरानी सैयद शाह मियां साहब कादरी की दरगाह,

0: जाति पाति धर्म से परे मानवता के संदेश का जीता जागता सबूत। हजरत बाबा की प्रतिभामयी जीवनी व संदेशों को वहां के मौलवी सैयद शाह अनवर बाबा कादी जी द्वारा।
1: बाबा वचने दिन बगदाद शरीफ नुचे बगदाद बगदाद बरनाला बरनाला वो मुखाम
2: एकड़ी
1: बरनाला पंजाब बोला।
3: 500 साल पहले हजरत बाबा जी बगदाद से यहाँ पर आए थे, फिर बरनाला पंजाब जाकर घोर तपस्या की उन्होंने, वहां से फिर बगदाद होकर कर्नूल में आ बसे। अपने पास आए हुए लोगों को मानवता परोपकार जैसी उपदेश दिया करते थे वे। 40-50 साल के बाद वे समाधि में चले गए। अब भी दरगाह पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं अपनी मन्नतें लेकर।
4: श्री मुस्तफा ने हमें बताया।
5: నా పేరు ముస్తఫా అండి, నేను తాడపత్రి నుండి వచ్చానండి. నేను నెలగా ఊతురు వస్తూ ఉంటానండి. ఇక్కడ స్వామి మహత్యం ఎక్కువ అండి. ఇక్కడ ఎవరన్నా రాని ఒక దినం నిద్ర చేసి
6: మేరా నా ముస్తఫా హై మనసులో అనుకుంటే మై తాళ్ళా పురుదు తూర్ సే ఆయా హు అందుగాని ఇక్కడ మై హర్ మహీనే మే బాబా కే దర్శన్ కే లియే ఆతా హి రహతా హు ఫిర్ భీ బార్ బార్ ఆనే కో मैं बाबा के दर्शन के लिए आता ही रहता हूँ, फिर भी बार बार आने को मन करता है।
0: और ये हैं श्रीमती रत्नम्मा।
7: रत्नम्मा गुड़ूर नंटी मको कोनी कष्टाल पाले वचन।
8: मेरा नाम रत्नम्मा है, गुड़ूर से आई हूँ। मेरे शौहर को नौकरी से निकाल दिया गया था, हम बाबा के पैर पड़े, अब तो फिर उन्हें नौकरी मिल ही गई है।
9: तुम भद्रे कितना सुंदर और महत्वपूर्ण है यह धार्मिक स्थल, दो जीवन धाराओं का यह पूर्व संगम।
10: हाँ तूने ठीक कहा, मेरा नारा है मानवीय एकता। मेरे तीरों पर द्वितीय काशी यानी कि दक्षिण काशी अलमपुरम भी है, जो विष्णु के अवतार परशुराम की माँ रेणुका देवी के मंदिर के लिए सुविख्यात है। यहाँ पर इतिहास से संबंधित बहुत सारे शिलालेख मेरी सफलता के प्रतीक तुम्हें मिलेंगे। अपनी सफलता का गर्व है मुझे, मेरी तपस्या है निस्वार्थ सेवा। हाँ तपस्या।

0: आप दोनों ने कभी योगी राघवेंद्र स्वामी के बारे में सुना है?
1: हाँ हाँ, ये तो वही महापुरुष है ना जो महाभक्त प्रहलाद के अवतार माने जाते हैं। प्रहलाद की तपोभूमि उनकी यज्ञ भूमि थी।
0: हाँ, वही भूमि जो मंत्रालयम कहलाती है।

0: कर्नूल जिला आदविनी तालुक से 52 किलोमीटर की दूरी पर तुंगभद्रा के किनारों पर बसा मंत्रालयम पुण्य क्षेत्र। यहाँ पर सभी धर्मावलंबी स्वामी जी की समाधि वृंदावन के दर्शन के लिए आते रहते हैं। कहा जाता है कि महाभक्त शिरोमणि राघवेंद्र स्वामी समाधि ही में से अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं भी। स्वामी जी की समाधि की एक और विशेषता यह है कि यह भूमि उस समय के आदवेनी नवाब सिद्दीक मसूद खान की भेंट थी।
1: मेरी यात्रा मुक्ति की तरफ। संगमेश्वर नामक क्षेत्र पर कृष्णा नदी में मेरा सम्मेलन। मुक्ति की ओर चलते चलते आखिरी बार फिर एक बांध सुंकेसला में बंधकर करीब 3 लाख एकड़ के लिए सिंचाई की सुविधा देती हूँ।
2: अरे वाह, एक कपूर जैसे, सुगंध के वृक्ष जैसे बारंबार लोक कल्याण के लिए तुम्हारा यह आत्मसमर्पण।
1: हम नदियों का जीवन ही मानव सेवा के लिए है। ग्राम, नगर और राज्य की सीमाओं को पार कर भारतीय एकात्मता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की व्याप्ति करना हमारा जीवन लक्ष्य है। कल, आज और कल भी

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूर्ण अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं। मगर ये सब करते हुए ही जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

ये जो भक्ति का धन है, सुमिरन का धन है, पूजन का धन है, इस धन को सबसे बड़ा धन क्यों कहा गया? ऐसी इसमें कौन सी विशेषता है? तो इस पंक्ति में सुनिए, समझ में आ जाएगा क्यों कहा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि तारकासुर वध के पश्चात भगवान शिव शंकर तथा देवी पार्वती गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने लगे थे। दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बड़े हो चुके थे। महादेव और महादेवी ने उनके विवाह का निर्णय लिया। शर्त रखी गई कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। गणेश जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माता पिता की ही 7 परिक्रमाएं कर डाली। पूछने पर कहा कि वेद शास्त्रों के अनुसार माता पिता ही संतान का संपूर्ण संसार होते हैं, अतः उन्होंने संसार की एक नहीं बल्कि 7 परिक्रमाएं पूर्ण की हैं। गणेश जी का शुभ विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ संपन्न हुआ। उधर दैत्य माता दिति ने पुनः दैत्य साम्राज्य के विस्तार की योजना बनानी आरंभ कर दी। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूद जी, सहस्रों वर्षों से अजेय तारकासुर की मृत्यु के पश्चात भी दिति को बुद्धि नहीं आई, वो फिर दैत्यों के नाश का सोचने लगी।
2: शौनक जी, यही प्रश्न उठता है गुरु की महत्ता का। देवता भी विपत्ति आने पर सदैव त्रिदेव की ही शरण में जाते थे और वे गुरु का धर्म निभाते हुए उनका कल्याण भी करते थे, परंतु दिति ने तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य तक को अपदस्थ कर दिया था। तारकासुर पुत्रों को मार्गदर्शन मिलता तो कहां से।
1: महाभाग सूत जी, तो फिर दिति ने क्या किया।
2: उसने स्त्री सुलभ चाल चली, रोती बिलखती वो दैत्य सेनापति के साथ तारक पुत्रों के पास गई।

हाँ प्रपोत्रो, तुम्हारी इस दुखदाई स्थिति के कारण हम ही हैं। हम ही ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का

0: प्रस्ताव न मानकर तुम्हारे पिता को मृत्यु का आलिंगन करवा दिया, असल साम्राज्य का नाश कर डाला।
1: हमारे पिता की मृत्यु के पश्चात आपके इस विलाप का कोई अर्थ नहीं रह जाता दैत्य माता दिति।
0: प्रपौत्र तारकाक्ष, एक ओर हमें दैत्य माता भी कहते हो, दूसरी ओर हम पर यूं कटाक्ष भी करते हो।
1: सत्य को कटाक्ष समझना आपकी भूल है दैत्य माता।
0: हम जानते हैं तारकाक्ष, दैत्य कुल में उत्पन्न होने के उपरांत भी तुम तीनों भ्राता अपनी सत्यवादिता और धर्म परायणता के लिए जग प्रसिद्ध हो। असुर कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी तुम सतोगुण से परिपूर्ण हो, इसीलिए हमारी इच्छा है कि एक नवीन असुर परंपरा की नींव रखी जाए, जिसमें ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित तीनों गुणों का सम्मिश्रण हो।
2: ये आप कह रही हैं दैत्य माता दीति? आप जिन्होंने तमोगुण की सभी सीमाएं लांघकर दैत्यों का आतंक बढ़ाया, इस सीमा तक कि हमारे पिता को असमय मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा।
0: प्रपौत्र विद्युन्माली, काल कभी असमय नहीं आता, और समय न किसी के लिए ठहरता है न किसी के लिए एक समान रहता है।
1: आप कहना क्या चाहती हैं दैत्य माता दीति, साफ साफ कहिए।
0: तारकाक्ष, एक माता की क्या अभिलाषा हो सकती है? यही ना कि वो अपने वंश को फलता फूलता देखे, उसकी जय जयकार सुनकर गौरवान्वित हो। परंतु दैत्यों की जय जयकार देवताओं की हार पर निर्भर है। देवताओं ने छल से हमारा अमरत्व का अधिकार तो छीन लिया है, परंतु शासन का अधिकार हमसे नहीं छीन सकते।
1: हम कितना भी प्रयत्न कर लें दैत्य माता, ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनके स्थान से नहीं हटा सकते।
3: युवराज तारकाक्ष, आपका कथन सत्य है, परंतु हम इन्हीं तीन देवताओं के आशीर्वाद से इंद्रादि सभी देवताओं को उनके लोकों से हटा सकते हैं, त्रिलोकी पर पुनः अधिकार कर सकते हैं। यदि हम अस्त्र त्याग कर मात्र शोक मनाते रहे तो देवता सदा के लिए हम पर हावी हो जाएंगे।
0: सेनापति ठीक कह रहे हैं तारकाक्ष, हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
2: तो हमें क्या करना चाहिए दैत्य माता?
0: विद्युन्माली, तुम्हें अपने महान पिता तारक की परंपरा को पुनः स्थापित करना होगा।
2: परंतु पिता श्री की मृत्यु के पश्चात समस्त दैत्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया है।
3: हमें इन पर पुनः विजय प्राप्त करनी होगी। हमारी सेना अन्य दैत्य सेनाओं से अधिक बलशाली है।
0: और प्रपौत्रों, छल बल में तुम तीनों एक समान हो, अपने पिता से किसी तरह कम नहीं हो।
1: परंतु क्या देवता हमें पुनः पनपने देंगे?
0: इसका उपाय शुक्राचार्य तुम्हें बताएंगे।
1: परंतु वे तो हमसे रुष्ट हैं।
0: तुमसे नहीं तारकाक्ष, वे हमसे रुष्ट हैं, और हम स्वयं जाकर उनसे क्षमा मांगेंगे।
2: यदि दैत्य गुरु का मार्गदर्शन हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: आओ प्रपौत्रों, आइए सेनापति, सब मिलकर शुक्राचार्य के पास चलते हैं।
4: प्रणाम गुरु शुक्राचार्य।
5: तारक पुत्रों, तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष, आयुष्मान भव।
0: दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अकिंचन का प्रणाम भी स्वीकार करें।
5: दैत्य गुरु, हम कब से दैत्य गुरु हो गए दैत्य माता दीदी? आपने तो हमें इस पद से हटा दिया है।
0: अपने इस कुकृत्य का फल हम ही नहीं पूरा दैत्य साम्राज्य भोग रहा है। हम दैत्यों के ही नहीं आपके भी अपराधी हैं। अहंकार में गुरु का ही अपमान कर बैठे।
5: बाण कमान से छूटने के पश्चात पुनः तुणीर में नहीं आता है दैत्य माता, आहत तो हम हो चुके हैं।
0: हम जानते हैं दैत्य गुरु, हमने अक्षम्य अपराध किया है, परंतु हमारे अपराध का दंड हमारे इन प्रपौत्रों को न दीजिए।
1: दैत्य गुरु, आप ही इस असुर वंश को लुप्त होने से बचा सकते हैं।

0: बालपन से हम तीनों भ्राता आप ही से शिक्षा दीक्षा पाकर बड़े हुए हैं। असुर न होकर भी आप सदैव हमारे हितैषी रहे हैं।
1: हितैषी तो हम अब भी हैं पुत्र तारकाक्ष। गुरु कभी अपने शिष्य के अहित की कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु गुरु और शिष्य के मध्य अगर किसी का अहंकार और दंभ आ जाए तो गुरु को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी होती है।
2: हम जानते हैं दैत्य गुरु, आप हमारी ओर इंगित कर रहे हैं, परंतु अब हम प्रण लेते हैं कि आपके मध्य कभी न आएंगे। हमें दैत्य कुल का यश पुनः चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी करने को तत्पर हैं।
1: ठीक है दैत्य माता दीदी, हम एक बार और आपका विश्वास किए लेते हैं।
2: दैत्य गुरु, आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा।
1: हम आश्वस्त हुए। तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष।
3: जी दैत्य गुरु।
1: दैत्य साम्राज्य की पुनः नींव डालना आवश्यक है। जाओ, मेरु पर्वत पर सुर और असुरों के महायशस्वी गुरु ब्रह्मा जी की आराधना करो। वे अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे।
3: जो आज्ञा गुरु शुक्राचार्य।
1: परंतु पुत्रों, इस बार वरदान सोच समझ कर मांगना।
3: ऐसा ही होगा दैत्य गुरु।

0: परमपिता ब्रह्मा को हम तीनों भ्राताओं का प्रणाम।
1: हे तारक पुत्रों, तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपने इस घोर तप का उद्देश्य बताओ।
2: हे विधात, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दें कि हमारा वध कोई न कर पाए।
3: हम देवताओं की भांति स्थिर हो जाएं, जरा रोग हमें छू भी न पाए।
4: मृत्यु हमारे समीप से नेत्र मूंद कर निकल जाए, हम अजर अमर हो जाएं।
1: महादैत्यो, अमरत्व प्राप्त करने का लोभ हर प्राणी को होता है। वो सर्वप्रथम हमसे यही मांगता है, परंतु ये वरदान हम दे नहीं सकते। यदि सभी अजर अमर हो गए तो हमारी ही बनाई सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए सृष्टि का नियम है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। अतः तारक पुत्रों, कुछ और मांगो।
2: जब मृत्यु अवश्यम भावी है ब्रह्मदेव, तो कोई भी अन्य वर मांगने का क्या उपयोग?
1: तारकाक्ष, बुद्धि के उपयोग से मृत्यु को सहस्रों वर्षों के लिए टाला अवश्य जा सकता है। तुम्हारे पिता का उदाहरण तुम्हारे समक्ष है। उसने ऐसी मृत्यु मांगी जिसे देने में यमराज को भी सहस्रों वर्ष लग गए। देवता हतोत्साहित हो उठे।
3: तो फिर हम कैसी मृत्यु मांगे?
1: विद्युन्माली, तुम तीनों अति बुद्धिमान हो। कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारी रक्षा हो सके और मृत्यु भी तुम्हारा वरण ना कर सके।
2: हे ब्रह्मदेव, हम तीनों ही अति बलशाली हैं, परंतु हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रह सकें। सर्वप्रथम आप हमारे लिए तीन ऐसे नगरों का निर्माण करवाएं जिन्हें देवता भी न भेद पाए।
1: तथास्तु तारकाक्ष।
3: मेरा नगर वज्र समान कठोर लोहे का बना हो।
1: तथास्तु विद्युन्माली।
4: और मेरा नगर रजत का बना हो।
1: ऐसा ही होगा कमलाक्ष
2: और ब्रह्म

0: मैं स्वर्ण नगर का स्वामी बनूं।
1: तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण होगी तारकाक्ष। कुछ और भी इच्छा है?
0: हाँ हाँ सृष्टिकर्ता, ये तीनों नगर एक के ऊपर एक सीध में बने हों और सबकी दृष्टि से ओझल रहे, ताकि कोई हमारे निवास को ढूंढ ही ना पाए।
1: हे बलशाली असुरों, जाओ, तुम्हारे ये नगर त्रिपुर नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा तुम तीनों त्रिपुरासुर कहलाओगे। अब अपनी मृत्यु का उपाय भी मांग लो।
0: 1000 वर्ष पश्चात भगवान शंकर एक अद्भुत सर्वदेवमय रथ पर बैठकर आए, तभी हमारा नगर उन्हें श्री विष्णु को और आपको दिखाई दे पाएगा। फिर वे एक ही अनोखे वाण से हमारे तीनों नगरों का एक साथ भेदन करें, तभी हमारी मृत्यु संभव हो पाएगी।
1: तथास्तु। समय आने पर स्वयं विश्वकर्मा इस रथ का निर्माण करेंगे। मैं दानव,
2: आज्ञा परम पिता।
1: इन तीनों दैत्य भ्राताओं की इच्छाओं के अनुरूप त्रिपुर की रचना करो।
2: आदेश का पालन होगा विश्व निर्माता।
0: एक बार फिर ब्रह्मा हम दैत्यों को मनोवांछित वरदान दे ही गए।
3: परंतु भ्राता श्रेष्ठ, अमृत तो हमें अब भी प्राप्त नहीं हुआ।
0: हुआ कैसे नहीं है? जब हमारे नगर सबकी दृष्टि से ओझल रहेंगे तो कोई उन्हें भेद कैसे पाएगा?
4: इतने प्रसन्न मत हो तारक पुत्रों, तुम शिव की महिमा से अनभिज्ञ हो। पुत्र तारकाक्ष, उनके लिए क्या संभव है?
5: परंतु दैत्य गुरु, तारकाक्ष ने 1000 वर्ष की अवधि भी तो मांगी है। अपने को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए ये समय पर्याप्त है।
4: आप फिर कूटनीति से भरी बात कर रही हैं दैत्य माता। पूर्व में यही दैत्यों के पतन का कारण बनी थी।
5: क्षमा करें दैत्य गुरु, तो अभी से कोई उपाय कीजिए।
4: है एक उपाय। शिव अति भक्त वत्सल हैं, कभी अपने भक्त का अहित नहीं करते। तारक पुत्रों,
6: आदेश दैत्य गुरु।
4: तुम कुछ भी करो, अत्याचार पाप, परंतु सदा अपने हृदय को शिव भक्ति में लीन रखो। उन्हें सदा पूज्य वंदनीय मानो। वे कभी अपने भक्त का अंत नहीं करेंगे।
0: दैत्य गुरु, परंतु कामदेव को तो...
4: इसीलिए कहता हूँ, किसी के विरुद्ध कुछ भी करो, शिव के विरुद्ध कभी कुछ मत करना। शिव आराधना अपना धर्म बना लो, तुम अमर हो जाओगे।
6: जैसी आपकी आज्ञा दैत्य गुरु।
5: शिव आराधना, जिस शिव का मैं नाश चाहती हूँ उसी की आराधना। शुक्राचार्य, समय एक बार फिर आपके साथ है, परंतु देखती हूँ कब तक। मैं भी देवताओं का अस्तित्व मिटाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी, कभी नहीं। भले ही मुझे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े।
7: तो महाभाग सूत जी, कुछ वर्षों की शांति के पश्चात दैत्य साम्राज्य का फिर से विस्तार आरंभ हो ही गया।
8: हाँ शौनक जी, परंतु इस बार

0: एक विशाल परिवर्तन आ गया था। तारक के तीनों पुत्रों ने शुक्राचार्य के आदेश से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति अपना ली थी। पापी पुरुष उनके दर्शन तक न कर सकते थे।
1: दैत्य प्रकृति में ऐसा परिवर्तन सूझ जी,
0: समय की यही मांग थी और यही था अमरत्व प्राप्त करने का एकमात्र उपाय। धीरे धीरे तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष ने पुनः त्रिलोकी पर आधिपत्य कर लिया, परंतु बिना किसी को सताए। इस बार उनका बल धर्म था।
1: तो क्या देवताओं ने अपना राज्य पुनः स्थापित करने का प्रयास नहीं किया सूत जी?
0: किया क्यों नहीं शौनक जी, निराश देवता सदा मार्गदर्शन के लिए सृष्टिकर्ता की ही शरण में जाते थे। इस बार भी वे करबद्ध हो परम पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे।
2: देवगणों, हम जानते हैं इन तीनों महादैत्यों को हम ही ने बढ़ाया, प्रोत्साहित किया है। अतः इनका गुरु होने के कारण हम इनका वध नहीं कर सकते। इनकी मृत्यु मात्र देवाधिदेव के हाथों निश्चित है। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं, तो आपके कष्टों का निवारण संभव है। देवराज इंद्र,
3: आज्ञा ब्रह्मदेव।
2: आप सभी देवताओं के सहित उन कृपा सिंधु की सेवा में जाएं। अपने दुखों का विवरण देते हुए उन्हीं से तारक पुत्रों के नाश का आग्रह करें।
3: परमपिता, आप भी हमारे साथ चलिए ना। महाप्रभो आपका निवेदन कभी नहीं टालते।
2: नहीं इंद्रदेव, इस समय हमारा आपके साथ चलना उपयुक्त न होगा। महादेव का प्रथम प्रश्न हमसे ही होगा कि दैत्यों की प्रकृति जानते हुए भी हमने उन्हें वरदान क्यों दे दिया।
3: क्षमा करें विधात, ना चाहते हुए भी देवता भी आपसे ये प्रश्न कर सकते हैं।
2: हाँ, आपका प्रश्न करना उचित ही होगा देवराज, परंतु हम अपने ही बनाए नियमों से बाध्य हैं। भक्त से प्रसन्न हो उसे मनवांछित वरदान देना हमारा धर्म है, परंतु ये भी स्मरण रहे देवराज कि वरदान का दुरुपयोग भी हमें सह्य नहीं है। भक्त को दंडित करने के उपाय भी हैं हमारे पास।
3: तो विधात, आप तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष को दंडित क्यों नहीं करते?
2: इंद्रदेव, वे धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। वे समरों में विजय प्राप्त कर रहे हैं अपने बल से, ना कि अपने अत्याचारों से। उनकी बंधित प्रजा उनके राज में सुखी है। हम उन्हें दंडित करें तो किस आधार पर? महाप्रभु, आपके इस अकस्मात दर्शन से मैं धन्य हुआ।
4: प्रिय ब्रह्मदेव, हम आपके मन की ये दुविधा ही दूर करने आए हैं। हम आपकी स्थिति अच्छी तरह समझ रहे हैं तथा इन देवताओं को भी यही समझाने आए हैं कि आपके कथन अक्षरतः सत्य हैं।
3: परंतु देवाधिदेव, हमारे कष्टों का निवारण कैसे संभव होगा? हम पुनः राज्य विहीन हो भटक रहे हैं, जबकि पापी दैत्य।
4: इंद्र, पाप और पुण्य की परिभाषा सुरों, असुरों तथा मानवों के लिए भिन्न नहीं है। सभी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, सभी के हाथों पुण्य होता है।
3: महाप्रभु, हम देवता हैं, सदा पाप कर्म से दूर रहते हैं।
4: इंद्र, अपने पाप कर्मों का स्मरण करो।
3: अपने पाप कर्म महाप्रभु?
4: स्मरण करो अपनी काम वासना, ऋषि गौतम की पत्नी पर आसक्त होकर तुमने छल किया, गौतम का रूप धारण कर उसके साथ शयन किया। इंद्र, हम शिव हैं, हम किसी में भेद नहीं रखते।

0: जब हम स्वयं अपनी पत्नी सती के अविश्वास के कारण उसका मानसिक त्याग कर सकते हैं, कामदेव को अपनी तपस्या में बाधा डालने के लिए भस्म कर सकते हैं, तो इंद्रदेव, हम आपके इस कुकर्म के लिए आपको दंडित क्यों नहीं कर सकते?
1: पुत्र इंद्र, यही देवाधिदेव का न्याय है। सतो गुण के स्वामी होकर भी जो मार्ग से विचलित होता है वो महाप्रभु के दंड का भागी होता है।
0: और पुत्र इंद्र, तारक पुत्र इस समय महान पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। नियम यही कहता है कि पुण्य आत्माओं पर विद्वानों को प्रहार नहीं करना चाहिए। देवताओं के समस्त कष्ट हमें ज्ञात हैं, फिर भी धर्माचरण के कारण वे दैत्य अवध्य हैं।
2: महादेव, अर्थात दैत्यों का विनाश संभव नहीं?
0: मैं संघारक हूं, फिर भी मैं मित्र द्रोह नहीं कर सकता। दैत्य मेरी भक्ति कर मेरे मित्र बने हुए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी के शब्दों में, तुम सब कर्म के मर्मज्ञ हो, अतः तुम ही बताओ, जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं?
2: अर्थात देवाधिदेव, आप भी हमारी समस्या का निवारण करने में असमर्थ हैं?
0: इंद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु हरे और हम महेश असमर्थ तो हो ही नहीं सकते। हम आपको उपाय बताते हैं। आप क्षीर सागर वासी विष्णु के पास जाएं, वे और नारद मुनि अवश्य ही आपके कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताएंगे। जाओ, उन्हीं के पास जाकर निवेदन करो।
2: जो आज्ञा देवाधिदेव। और महाज्ञानी शौनक जी, देवाधिदेव ने देवताओं को कष्ट निवारण का उपाय बता ही दिया।
3: आश्चर्य की बात है महाभाग, पहली बार ऐसा हुआ जब प्रभु शिव शंकर ने स्वयं कुछ उपाय ना कर देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया।
2: विप्रवर शौनक जी, कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति के पास समस्या निवारण का उपाय ही ना हो। ऐसे में बुद्धिमान व्यक्ति दुखी व्यक्ति को उलझाए बिना निवारणकर्ता के पास भेज देता है।
3: महाभाग सूत जी, इसका मतलब ये हुआ कि देवाधिदेव जानते थे कि देवताओं की समस्या का हल विष्णु हरे के पास है। सूत जी, श्री विष्णु ने देवताओं को क्या उपाय सुझाया?
2: श्री विष्णु हरे ने जो उपाय समझाया उसकी चर्चा हम अगली भेंट में करेंगे।
4: श्रोताओ, शिव महिमा का ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के पहले अध्याय से लेकर पांचवें अध्याय तक से लिया गया था।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचा कर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ आनंदित हुए। सबके हृदय में यही अभिलाषा उत्पन्न हुई और सब शिवजी से यही प्रार्थना करने लगे कि राजा दशरथ अपने रहते श्री रामचंद्र को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में बैठे हुए राजा दशरथ ने स्वभावतया हाथ में दर्पण लिया, उसमें अपना मुख देखा और शीश का मुकुट सीधा किया। राजा ने देखा श्रवण समीप भये सित के सा। उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है,
1: नृप जब राज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
0: राजा दशरथ ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया,
1: मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूलि की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ राम करियहि जुब राजु, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं, शरीर रहे या चला जाए।
2: सुनु नृप, जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही। वही सब लोगों के स्वामी

0: श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए देगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुवराज।
1: दशरथ जी गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर प्रसन्न चित्त महलों में आए, सबको एकत्र कर मंत्री सुमंत से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरख ही राम ही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नतापूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध, मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
0: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा करो, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
1: मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां होने लगी, अयोध्या में बधावे बजने लगे।

0: देहि अवसर मंगल परम सुनि रहस्यउ रनिवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगीं। कौशल्या ने नाना वित्तान दिया। वे प्रार्थना करने लगीं, जे ही विधि हो ए राम कल्याणु देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन हिय हरखे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें भवन में लाए, विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया, फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल तमनु। नाथ

0: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन की खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।
1: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे, उधर विघ्न मना वहीं देव को चाली, क्योंकि तिनहिं सुहाइन अबध बधावा, जो रही चांदनी रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर वन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवताओं की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती वे वहां से चल दी। ऊंचे निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति, किसी प्रकार वे अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तुपह गई बिलखानी।
2: अरे मंथरा, तू उदास क्यों है? गालू बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे कहते क्यों नहीं, राम राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
3: कत सिख दे हमई को माई, गालु करम के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जनेसु दे चुभ राजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे कर्म में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो, देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलो की मोर मनु छोभा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस ना हो हमारे। रानी तुम्हें तो तोशक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
2: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावा तोरी।
3: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं।
2: प्रिय वादिनी, सिख दीना हूं तो ही, सपने हूं तो पर कोपु न मोही। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा। सूर्यवंश की तो ये रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक बने। राम तिलक को जो साचो हूं काली, देव मांग मन भावत आली। राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान ही सब माताएं प्यारी हैं, मो पर गरह ही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अगर विधाता कृपा करके मुझे दोबारा मानव देह दें तो ये भी दें कि राम पुत्र और सीता वधू हूं। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके राजतिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है?
3: एक ही बार आस सब पूछी, अब कुछ कह जीव करी तुझी। फोर जोग कपारू अभागा, भले हु कहत दुख रो रही

0: अरे माई, तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं। मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाबा ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हम ही कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़ चूक हमारी।
1: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है।
0: तुम पूछो मैं कहत डरा हूं, थरे हूं मोर घर फोरी ना हो। पर चलो, मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूं, इसीलिए कहती हूं। रानी, तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो, सो ठीक ही है, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। देखो सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज कमल को चलाकर भस्म कर देता है।
1: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
0: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
1: क्या
0: उपाय की पाड़ लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज पस जान न हुराओ। लेकिन रानी, मन मलीन मुंह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव।
1: मंथरा,
0: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, राजा ने भरत को जो ननियाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए माई, कौशल्या को तुम बहुत ही चुभ रही हो, वो कपट करने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
1: लेकिन राजा,
0: हाँ राजा ही तुम पर प्रेम अभिषेकी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहां ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
1: लेकिन राम का राज तिलक हो,
0: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है, ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
1: आगे की क्या बात मंथरा?
0: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
1: मंथरा तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता, तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
0: कहाँ पूछो, तुम अबहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूं तो भगवान मुझे दंड देगा।
1: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
0: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। रेख खचाई कहूं भल भाखी, भामनी भई हूं दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण

0: राम के नायब होंगे।
1: मंथरा
0: रानी, धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
1: मंथरा तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी, मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी, सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ, जहां तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही यह कठिन दुख किस पाप के बदले दिया।
2: नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवति सेवकाई,
1: शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
0: रानी असकस कहूं माने मनुना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना, पर कह देती हूं जे ही राउर अति अनभलता का, सोई पाइए यहु फलु परिपाका।
1: स्वामिनी मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे न दिन में चैन है न रात को, न भूख लगती है न नींद ही आती है।
0: मंथरा तब तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा भरत भुआल हुई ये साची।
1: सच
0: रानी अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो है,
1: परम कूप तो वचन पर सकौ पूत पति त्याग, जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी, तू कह तो सकी।
0: स्वामिनी सुद अही है कि नहीं, तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहूं आज जुड़ा पहुंचाती, पुत्र को राज और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंथरा
0: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना, भूपति राम सपत जब करी तब मांगहू, यही वचन न डरे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरा कहा मानो, सीधे गोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय, तू बहुत ही बुद्धिमान है, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है।
2: जौ विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली।
3: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कह के श्रोताओं

0: அந்தத்து கத்வா சாஞ்ச சமய சானந்த நிருப்பு கயவு கேகையி கே
1: லேக்கின் கோப பவன் சுனி சகுச்சே உராவு
0: டர் கே மாரே ராஜா கே பயர் ஆகே நகிம் உட்தே கேசி விடம்பனா ஹே ஸ்வயம் தேவராஜ் இந்திர ஜின் கீ புஜாவும் கே பல் பர் ராட்சசோ சே நிர்பய ஹோகர் நிவாஸ் கர்த்தா ஹே ஔர் சம்பூர்ண ராஜா லோக் ஜின்கா ருக் தேக்தே ரஹ்தே ஹே வஹீ ராஜா தஷரத் ஸ்திரீ கா க்ரோத் சுன்கர் சூக் கே
1: சபய நரேசு பிரியா பஹி கயவு தேகி தசா துக்க தாருண் பயவு
0: ராஜா நே தேகா கைகை ஜமீன் பர் படி ஹே புரானா மோட்டா கப்டா பஹனே ஹுவே ஷரீர் கே சபி ஆபூஷண் உதார் கர் ஃபேங்க் தியே ஹே
1: ஸ்ரோதாவோ உஸ் துர்புத்தி கைகேயி கோ யஹ குவேஷ் கைசா லக் ரஹா தா மானோ பாவி விதவாபன் கி சூச்சனா தே ரஹா ஹோ
0: किसी प्रकार राजा कैकेयी के पास गए और कोमल वाणी में बोले,
2: प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केई जम चैलीन्हा, कहु केई रंग कही करौ नरेसु, कहू कही नृपही निकास हो देसु। प्रिय, देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूं। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, सुनै ने तुम मंगल साज सजा लो।
3: मांगु मांगु पै कहो पिए, कबहू न देहू न लेहू। आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
2: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनि देहु, दुई के चार मांगी मकुले हो। तुम जानती ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
3: तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
2: अच्छा
3: नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम बनवासी।
4: मोर मनोरथ सुंदर फूला, भरत करिनी जिमि हाथे समूल। अब सुझार तेही कई कई, तेही नसी अचल विपत्ति कह नहीं। आह, क्या होने को था और क्या हो गया।
3: भरत कोई राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ?

0: जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञ नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे वरु देना, जाने हूँ ले ही मागी चबेना। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
1: इससे कैसी कठोर परिस्थिति पैदा कर दी कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ही ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? ये विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे भरत तू राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संग करू साथी। मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकाल कर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहु सुभाव, राम मातु कछु कहे उन्हें काहु। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, ते ही ते परे हो मनोरथ छूछे। प्रिय अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। अजहू हृदय जरत ते आच, रिस परिहास इस साचे हु साच। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा? प्रिय हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन वरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिये दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आसीना।
0: आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है, मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन मार।
1: हा राम, हा राम, हा राम।

0: क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मींच उसी इस पर नाची। अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: जनी दिन कर कुल होसी कुठारी, मांगू मात अब ही देव तो ही, राम बिरह जनी मार असी मोही, राखु राम कहूं जही तही भाती, ना ही ते जर ही जन्म भरी छाती।
2: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम कही बल कहू, दुई की होई एक समय फुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे? अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए, इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
1: तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो फूल कर भी राजपद नहीं चाहता, तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है, ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। मगर याद रखना, ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी, समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी। केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तो ही नहीं इकलाग करूं सोई, लोचनोट बैठ मुखोई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझसे कुछ न कहना, अरिया भागनी अंत में तू पछताएगी कि जो तू तांत के लिए गाय को मार रही है। हा हा राम हा राम। भगवान करे सवेरा ही ना हो, ये रात इसी तरह बनी रहे, भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदित न हो, अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।